0: के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है पर इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में है। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अनियमों के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अनियमों के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं उसका प्रभाव दिखने भी लगा है।

विभाग ने आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ बोरेल से बात की है। अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंध्र, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वन विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Aquí.
1: Ya no me ha llegado. Amaro, micro. Amaro, ¿qué está arriba?

भक्ति संगीत में कार्यक्रम अर्चना आकाशवाणी खोज केन्द्र पर प्रसारित मित्र हम पी सा बारक छगन पर्वत में शर्मा गवाली मेरा बहनी रचना

0: जाए ना भाई ना मने खबर छे के मानसून देख दरमियान भरिए ना जमाए हमें माछी मारिए ना कराए समझियो
1: ये बराबर मानसून ब्रेक दरमियान बड़ियों खेलो एक गंभीर और सजग पात्र बनो छे अने हाँ जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखा है तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी आपकी सजगता अने तकेदारी आप एक दरियाई सुरक्षा की खातरी गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: स्थानीय अथवा संपर्क व्यक्ति के वोट बढ़िया में देखा है तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करें। मरीन पुलिस ने जान भर दी, आपने सजगता आने तक दारी, आप एक दरियाई सुरक्षा की खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जन हित में प्रसारित।
1: अर्चना कार्यक्रम में हरी संभवे फकीरा दर्जा परमात्मा तंथे बासी जीवन में रचना

युद्ध में जाम्बवान के पद बाहर से मूर्छित होकर रावण धरती पर आ गिरता है। रात हो गई देख सारथी उसे रथ में डालकर युद्ध स्थल से दूर ले जाकर उसकी मूर्छा दूर करने के उपाय करता है।

सभी राक्षस वहाँ आतंकित खड़े हैं। फिर जटा अशोक वाटिका में सीता को युद्ध की गति का विवरण सुनाती है। बाणों से कटने के बाद भी रावण के सिर और भुजाएं बढ़ने की बात सुनकर सीता उदास हो जाती है और माता के समान स्नेह देने वाली त्रिजटा से पूछती है कि किस प्रकार रावण का वध हो पाएगा। त्रिजटा कहती है कि हृदय में बाण लगने से वो मर सकता है, किंतु श्री रघुनाथ उसके हृदय को लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहाँ उसने तुम्हारी छेने बिठा रखी है, लेकिन बार बार सिर कटने से उसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा और तब श्री राम वहाँ वाण मारेंगे। उधर मूर्छा टूटने पर रावण युद्ध भूमि से अपने को दूर पाकर सारथी पर क्रोध होकर उसे धिक्कारने लगता है।

Buscar otras maneras de luchar que sean de alguna forma. Expression de राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं।

0: गतिविधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों को दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन का यहां है। हवाई क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में है। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज जंगल के मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जंगल के मध्य को कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लखनऊ शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थाने की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा है लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार है। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level

समाचार आप आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा नेटवर्कथी सांभळी रह्या छो। आ समाचारनो जीवंत प्रसारण आप अमारी यूट्यूब चेनल एआईआर न्यूज गुजरात पर सांभळी शकशो। वधु समाचार माटे अमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/jio अने अमारा एक्स हेन्डल @AIRNews_MLE ने फॉलो करशो। અમદાવાદ ફાયર અને ઇમરજન્સી સર્વિસ

साथे स्वागत करा रहा हूँ। अदानी एयरपोर्ट पॉलिटिक लिमिटेड में नियमित जीत अदानी ने कहा कि हवाई सेवा में शुरुआती नंबर स्थानिक पुरुष यात्रा समय प्रोत्साहन से पहले मुंद्रा पहुंचा मोटे लोगों ने एक जगह रुकाई ने लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, परंतु आ समय कहीं मुसाफिर समय घो ओछो थी गयो। જામનગર એનસીસી ગ્રુપ હેડક્વાર્ટર આર્મી નેવી અગ્નિવીરોએ ગઈકાલે જામનગરમાં 27 ગુજરાત બટાલિયન

0: आकाशवाणी समाचार मित्तल पटेल वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदीए कहा कि आतंकवाद साइबर सुरक्षा सहित वैश्विक पड़कारों ने पहुंची वाला ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। ब्रिक्स राष्ट्रों आतंकवाद और साइबर जोखिमों का सामना करने सहियारा प्रयासों पर भार मुको। ऑनलाइन संबंधित असुविधा में खेडों ने सहाय करवा सरकार सज्ज। नीति आयोग जनावे भारत ने छाला त्रैमासिक गाड़ा में 5.4% विकास दर मिलो। सरकारी हॉस्पिटलों में जन्मना शिशुओं ने तमिलनाडु सरकार 1 ग्राम सोना ने वीटी आपसे। पुरुषों की हॉकी में भारत अफवाज प्रो लीग की प्रथम मैच में पाकिस्तान ने 4 पॉइंट हार। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनावे के बदलाता वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग ने बड़ी घाट बनावा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती टेक्नोलॉजी सुधी में सहियारा पड़कारों का सामना करने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गईकाले सांजे ब्राजील रशिया भारत चीन और दक्षिण आफ्रिका सहित ब्रिक्स देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों साथ मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने जानवियों के भारत में ब्रिक्स प्रमुख पद व्यवहार और सहयोग ने प्रोत्साहन आपको सुरक्षित और समावेश विश्व में योगदान आप प्रयास कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतार में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी साथ टेलीफोन पर बात करी। कतार में अमीरे रविवार कतार में रास लपंग शहर में थे आकस्मिक में भारतीय नागरिकों ने मौत पर दुख व्यक्त कर घायलों ने झड़पती स्वस्थ होने कामना करी थी। प्रधानमंत्री पीड़ितों परिवार प्रत्येक संवेदना व्यक्त करने बदल श्री थानी ने आभार मान्यो और घायलों ने तात्कालिक तबीबी सहाय पूरी पड़वा बदल श्री थानी ने प्रशंसा करी थी। दिल्ली में ब्रिक्स देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में आतंकवाद साइबर जोखिम और वैश्विक सुरक्षा पड़कारों का सामना करने सहयोग बताया पर भार मुकवा। ब्रिक्स देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 16वीं बैठक में अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल द्वारा करी। बैठक में सभी देशों उभरता सुरक्षा पड़कारों पर चर्चा करी। विदेश मंत्रालय ने जनाया मुजब हम वैश्विक बनी गये सुरक्षा जोखिमों पर खास चर्चा करती।
1: इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा खाद्य सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: दरमियान विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणदीप जयसवाले जणाव्युं कि ब्रिक्स देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारोनी बैठक माटे भारत आवेला वांग ई चीनना विदेश मंत्री साथे श्री अजित डोभाले एकबीजाना मुख्य मुद्दाओ पर संवेदनशीलता जाळवणा महत्व पर भार मुक्यो हतो। तेमणे कह्युं कि आ भारतनी परस्पर संवेदनशीलता परस्पर हित अने परस्पर आदरनी नीति साथे सुसंगत छे। केन्द्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारामने स्थितिस्थापक अर्थतंत्रोना निर्माण टकाऊ वेगनो विकास आपवा अने समावेशी विकास सुनिश्चित करवा माटे मजबूत बहुपक्षीय सहयोगनी हाकल करी छे। गईकाले नवी दिल्हीमां वर्च्युअली ग्लोबल कन्वर्जन्स फॉर ग्रोथ समिटने संबोधता श्री सीतारामने जणाव्युं हतुं कि वर्तमान विश्वमां समृद्धि अने पड़कारो वहेंचायेला छे, परंतु संघर्षो अने अनिश्चितता विकासशील अने अविकसित देशोने अप्रमाणसर रीते असर करे छे। तेमणे आ पड़कारोनो सामनो करवा माटे संयुक्त वैश्विक पगला लेवानी जरूरियात पर भार मुक्यो हतो। सरकारे जणाव्युं छे कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रीते साबित थयेल अने तेनुं सतत निरीक्षण करवामां आवी रह्युं छे। सरकारे इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल ईबीपी अंगे सोशियल मीडिया पर केटलाक भ्रामक अने पारविहोणा दावाओ जनताने गैरमार्गे दोरनारा गणाव्या हता। सरकारे जणाव्युं कि तेल मार्केटिंग कंपनीओ वाहन उत्पादको बर्तन परीक्षण एजेंसीओ अने अन्य हिस्सेदारो साथे परामर्श करीने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमना अमलीकरण पर सतत देखरेख राखी रही छे। कृषि और खेत कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जणाव्युं कि सरकार ऑलमीनों ने संभवित प्रतिकूल असरों ने पहुंची वा माटे खरीफ पाक माटे सावचेतीपूर्वक तैयारी करी रही छे। नवी दिल्ली में श्री चौहान ने जणाव्युं हतुं कि देश में अत्यार सुधी में आश्रे 43% वरसाद की खात रही छे और जुलाई में पण चोमासु नवुं रहेवानी धारणा छे। श्री चौहान ने जणाव्युं हतुं कि आश्रे 315 जिल्लाओं में सामान्य करता ओछो वरसाद पड़वानी धारणा छे।
2: ओवरऑल लगभग 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना है। उनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब 25 से 50% सिंचाई की
0: નીતિ આયોગના ઉપાધ્યક્ષ ડોક્ટર અશોક કુમાર લહેરીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતનો કુલ વેપાર 5.4% વધ્યો છે. છેલ્લા લહેરીએ નવી દિલ્હીમાં ટ્રેડ વોચ ક્વાર્ટરલીના અહેવાલના નવીનતમ સંસ્કરણનું વિમોચન કરતી વખતે આ વાત જણાવી. ઉપાધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતની નિકાસ $1.84 trillion અને આયાત 6.5% વધી છે. પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે આ કટોકટી કામ ચલાવ છે અને આશા વ્યક્ત કરીએ કે ટૂંક સમયમાં વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાશે. આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો. આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ AII ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો. વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/gu અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AII_News_ABAD ફોલો કરશો. તમિલનાડુ સરકારે વેટી પનલગામ વિઝન ડોક્યુમેન્ટને મંજૂરી આપી છે. થાઇમાનમ થાંગા મોથીરા થિત્તમ પાયલ હેઠળ રાજ્યમાં કાયમી ધોરણે રહેતા પરિવારોને સરકારી હોસ્પિટલમાં જન્મેલા નવજાત શિશુઓ

0: آکاشوانی نه پشکنده چه هده برابر اتفاگی سمجه پرباد در بعد سبه اتفاگی مانی نیوز آمی دلک انتباتی ریلی ترشون
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों में आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया

0: समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबर को छूट। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के लिए बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गे शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल

0: साइबर खतरे। ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थाने की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी है।

एक अफजलाली कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने

शहरी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका

spreek zonder Dresden met hen, horen ze zullen van boven met hen op zee, graag als artsen zijn we daar ook gewoon niet eigenlijk. Zometeen kunnen wij zich wel artsen nu dan in wezenlijk aan, die ze bijhaal met een opgeleid, zorgen zoals je hebt gegarandeerd gekregen, die ze bijhaal met Iran, Oman. Maar op zich ook een medische artsen op de jeugd zijn het van, zijn ook die je eigen. Zijn prijs toekomt zullen we elkaar alle mee raam keraad dood alleen brengen en ik aan. Die horen ons zullen we met drie baan zijn gehazen kunnen, बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल XATIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार गुजरात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो बोस से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाद

फरवरी को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमरीकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमरीका ने ज्यादातर भारतीय

0: जिनमें सूखे दफ्तरार अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्रीनट्स, हाल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल है। रेशो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन

साथ 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन,

and Chauhan ने कहा है कि सरकार इन मेलों के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।

उसमें पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कुछ

0: परसेंटाइल वाले 20% वाले प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। लाहौर टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में सीयूईटी के बाद भी 60% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली एनसीआर में मौसम मिली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई। सुपरफूड ग्रेड ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लेपान गैस संयंत्र दुर्घटना में भारत भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के नाम से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे आजना मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित बीजा नागरिक पुरस्कार समारोह में पद्म पुरस्कारों प्रदान कराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिक देवो भव विचार साथ अधिकारी शासन में नागरिक ने केन्द्र में राखवा आग्रह कर्यो। सेवानिवृत्त यात्रा की तैयारी के भागरूपे सुरक्षा दल अमरनाथ बेस कैम्प खाते एक मॉक ड्रिल योजी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीएस स्नातक संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा क्यूट 2026 परिणामों जाहिर कराया। सौ गुणे सौ आगे मेन साथ राज्यभर में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या कहवाणी महोत्सव प्रारंभ। केन्द्रीय सहकार मंत्री अमित शाह कठोर टेलीग्रेनी खरीदी में मध्यस्थियों की भूमिका ने दूर करने पर भार आप। कच्छ ने देश के विविध शहरों से जोड़ती विमान सेवा शुरू। राज्य में 2-3 दिवस में चौमासु 57 रीते बेसत होती हवामान खाता की आगाही। कच्छ में शाला प्रवेशोत्सव प्रथम दिवसे कुल 20,639 विद्यार्थी आंगणवाड़ी थी लेने धोरण 11 सुधी में विविध स्तरों में प्रवेश मेळव्यो। आज गंगा दशहरा समापन गायत्री जयंती उजवणी निमित्ते भूज में गायत्री शक्तिपीठ खाते विविध कार्यक्रमों आयोजन। जामनगर एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर हेठ आता जामनगर पोरबंदर भूज वेरावल गांधीधाम युनिटेड बटालियन कुल 45 आर्मी और नेवी कैडेट्स अग्निवीर तरीके राष्ट्र की सेवा में जोड़ाया। गांधीनगर तालुक में फूड सेफ्टी विभाग की टीम द्वारा खाने पीने विविध एकमों में चेकिंग करायो। 30 एकमों में चेकिंग कर 30 किलो वासी खोराक नाश करायो। हवे पछीना मुख्य समाचार सवेरे 9:30 वागे सांभळी शकशो। नमस्कार।

अगर लड़ते लखन जी कई लिखा कि गुलाम साथे कचते युद्ध करना अने इनके राजकुमारी रिया ने दिमेला तो तैयारी कर बैठा है। गुलाम सा 70,000 जो लश्कर खड़ी कच्छ मते चढ़िया चला रवाना थे हित कच्छ राज के इनकी जान तंदे रिया पूरी भरी थी और युद्ध की तैयारी बताया पर सर सेनापति ये पद की तैयारी कहीं न बताई। तब वक्त ने राखे हीरा जी चारी नारी जी साकों पहल कर दी पंजान जान साहेब लखो जी पंजी पाग पे लखा लगन दवा कपड़े भैया पे लखा जी ना ऐसा हो गया इन्हें तो दो प्रख्यात है कि पल हुई पड़ते तेरो दी कमार कच्छ में पंजो भर ले साहेब लखे के ही पंजान जा ये लखो जी भैया पे लखा सजना तो बनिया ये दरबार जे इसका जे सेनापति जीवन से जे अगुए कहीं ने किसान लो जंग जाए गया उसे गुलाम सा अलग जो लश्कर कुछ दिया बसरस्त वचन दबो तबा मेरा ठाकुर बीन जी रिशो जी जिन जी मां मोती रंगे कुछ राज इन जो पिक्षा की है तय चता सिंध जो लश्कर हिता निकल दो इतने बड़े भाव तुम्हारे जो लश्कर जो सैन्य किया तैयार थे हटावा गुलाम सा के कबूल पे तो हमारे गांव के ठाकुर बीन जी रिशो जी कुछ राज जो लश्कर भी रहे जमाने में कि कचरत पाए इतने वह बा जोड़ता जोड़ता पड़ी तो कुछ जा धमिया तो नहीं तो जो सब का कोई बोलो आए हम ही बोल बा जो कोई बोला बोलो ने तो पाते बोले कम अच्छे से भी ठीक नहीं अपने सारा पूरे सम्मान नो हम बोल बोल रहे थे पंजे चावल में भर गया और अपने घाट कलाल के बटन दे चुका वह वीर ठाकुर भावर पंजे भावे समय कई रोज के साथ दे लड़ना तैयार है क्या पंजे विचार में वक्त गया अच्छा लेता हूँ डूब गया हिम घटना में सुना इनके पशु के आंजला घरे जा घरे मंदिर में तक कतरा है तेरे जवाब में बिन जी चो तो सहा असी का आंजला जो पर सचा घरे जा तो हजार जी हमें जोड़ के घरे थे हैं ही चीज मतलब गुलाम साहब जी मापन कंजरी होंगे इन्हीं भावना जी मापन होते रहे इन्हीं ही वह असल सिद्ध जो नहीं होंगे तेरे जवाब दे रहे हो मुलाकात करे थे वह बोलर बनाया पर विचार आयो तो छावनी में सार को बैठो और पैर के हथियार करवा जो सराज जो सर पर मारी भी दबे तो कच्छ मतलब बिस्तर ऊपर तेरी मिले फिर विचार है सराज ये छावनी भी अपना चल गया और सर के समय पर गया तो अब थोड़ी जान जो रही नहीं सराज जो उड़ दो जाओ वो तो अच्छो भले पर ये जा हथियार बना रखी बची जा तो जो को आते चल रहे हुए ये मौके पर जान करने लगे हुए उन्हें भीम जी यशो जी समझी गया तो हरे पाते मौको मिले तो ये उन्हें बिगड़ हथियार छावनी में उन्हें जो कई अर्थ में अपनी पाचा भरी गया सही लश्कर जो मुनि अमर सरिता से सिंधुल वजय स्वागत कंदल महाराजा ठाकुर भावर पहुंचे वो 500 मारी भरा चले गए रस्ते सजो दे गंधा लड़गा और चले जो तो लखा दो में लखा थे गया तो लगता रही कम बची गया वे ठाकुर भावर जी ले चले हुए इन पहले कच्छ राज जो लश्कर ये भयत लश्कर भारे से देख पहुंचे आया हुआ लखे जी जो सलाम हो चुका जीवन से कम वक्त चले करना मालूम नहीं संदीप जी गाल करी चित्त कटारे जी गाल करी आज जी रात कनी ने जी सलाह दे हो इन बड़े सेनापति ने जो विचार और युद्ध नीति में फेर दो और युद्ध चालू न कर सके महिला गुलाम साहब जय डूंगर मथे जी एक तो जानेंगे ने जारी मथे कम रास्ते वेणु तेजित से वेणु ये विचार रखे हैं कारण कि डूंगर मथे गोला चढ़ी सके थी मेला एक अन्य रात चोच लश्कर जे पाए बजे तैयारी कर रखे हैं कुछ लश्कर पर तैयार हो कई आदेश मिले इतनी चुनाव हुई मैं मोर्चे पे बड़े तो बारगुरु भरी तैयार रखे में आवे भाई मोर रात जो कलरे इनके आयोजन करवाने मोर में ग्राम में आवल गोई जो उतार के मेरी इनके गोई जो संगीत है मसाले बंदी जरी गए गोई के आते चले गोई का डूबरे जो डिडे बड़े घसे जी गोई होंगे डूबरे के चले लगे पच्चीस साल जो लश्कर का डूबर के चले लगे कच्ची संतरे के लगो तो सारा जो लश्कर जारी पे चल रहे हुए अपने सुपर लश्कर शब्द है यो सुंदर वजन लगो और समय पर तो आदेश थे तो टॉप करो चले ने रुकम थे अगुनी सांझ में बड़ी तैयार कल टॉप छुट्टी है खड़ी पर लाख और ठनल हुई एक इतने जोर में छुट्टी तो हम जो चुने बंद पाई है पति को और तो अपने में खाई में छाई पाई यहाँ जो हथियार हाथ में शरीर लो इन बार बारे में सहज लश्कर पर लगभग डूंगर के अचित गो रात जो पठलो पोर तेने वरी इनजी नाक इनजी नाक गहे पी हुई एक रे तेर दुश्मन में तेर मित्र इनजी ओर का मित्र रे जारे मते गमा सा गुप्त किलानो
좋아질 것 같아요.

ग्राहक सेवा रकम होती है। इन युद्ध में कुछ जो लश्कर कटे हो इनकी कोई बाउंड्री तो न बनाए, पर कमरे में लश्कर कटे 70,000 तो कटे 1,75,000 वो इनका उल्लेख नहीं था। वही बात जो नुकसानी बिहार में जो खुलवाड़ी सीधे लश्कर जी थी कुछ जगह लीडर ने जाकर 14,000 मारो तो मची गया। बेसियल मानव कुमारी जी जात कच्छ में आज एक एक सौ लीडे जहरे मारे जो पैर दवा जाता तुम्हें मिले थे जहरे जो जिद पूरे थे जीवन सेट वृद्ध में मिलाओ इतने पंजे सेट के पंजे स्वार्थ पूरे थे और पंजे सेट पर जिद जी कुमारी नेरी विवर बनी दियो हेना ये दिजा समाचार बुझ पदा कच्छ लश्कर में अगले हुए है तुम्हें बुझ राज के साथ रहेगी पर चिंता थी मुसीबत के अटकाया पूंजी सेठ के राजता फानो छपा रावर हरे में आया जिन रिकॉर्ड गुप्त रावर तीन वक्त जा राजमाता राजकुमार जाए जे तीन वक्त जा पाकत ले जाए एनी पूंजी माथे जो दोड़ो मार हकरे गमी में रखी पूंजी सेठ के पूजायो पूंजी सेठ राज जी नीति ने खास कोई राजमाता जी रावर नो तीन के कलीरियो ने गुलाम साके अपने रस्ते कच्छ में गोले थे अगले बिना सिंह के गावड़े छुपी लेके जानकारी अगला से जो रास्ते का सड़क के भरिंदो भरिंदो भारतीय गढ़े के चलेंदो संगल जे गुड या अच्छी पगो पूजी सेठ पंजी युक्ति के युक्ति अगले अगले संगल गुड तरफों पक बारो चलो कहें कि गुड के बड़ी हर चीज़ के गुलाम सा चापक पाचा पिया पूजी सेठ के पीछे का अन्य अन्य कतरा गुड पाके पसार करना है पूजी सेठ जवाब दिनो कि नंगा पुत्र रिश्ते में बुझ पूजा जी तीन है कारण कवच में रिश्ते जी लड़े हैं मैं झेर विजय में आयो है इतने पाके घोड़े जी रस्ते थे बुझ पूछो पंदो मैं रस्ते में एक अपने खंड का ढांची बाकी है पूजी सेठ जी ज्ञान सुनी सहजी छाती ले रही मैं मान देर कच रात समय सिंह संगीत थी हो तो करे जी ज्ञान के सहा इतने पूजी सेठ सेठ के हमें पंजी बुझ जी विधान पदो इधर में अगले साल होते जरूर चर्चा करी विचार करी रात से हटी करी लक्ष्य में दो जवाबदारी खड़ी।

संगीत तुम्हें हो पकड़े जी गाल के सा अपने पूजो सेठ सेठ के हमें पूजो बोझ जो विद्वान को नजर में अगले ऐसा होते जरूर चर्चा करें विचार करें रात से निकल करें भविष्य में दो पाए जाए जब भी खड़ी।

अमित जी नारायण गढ़वी की आवाज में पाही बदल सो ने हणिया चो पावटा थोड़ो टाइम आए तो सुनो प्रभादन गानी वटा एक खास रही लोकगीत।

आप सभी श्रोताओं को आपके साथ ही अजीत का नमस्कार, जय जोहर, जय हिंद। श्रोताओ आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमने भेजा है जितेंद्र दास मणिपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मतीन भाई और मोतीन भाई मणिपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर पारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफ्ताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताब जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मैं हूँ। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनके छोटे बहन कोमल। तो श्रोता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोता जहाँ तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्ब सर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्ब सर की गुफाओं को भारत के सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित है। श्रोताओं यह गुफाएं स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो यह जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम वोकनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साहिली का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थी, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है जी। चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोता यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्ब सर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी है जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती है। जरा सोचिए श्रोताओ कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी के बूंदे टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्ब सर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल की झरने हैं जहाँ से निरंतर पानी की बूंदे गिरती रहती है। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बार आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा गुप्त अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरी वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताए क्या है वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती है वे अंधे होती।

0: है पति, यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं के, भला ऐसा क्यों है? नहीं ये बड़ी अजीब बात? जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। ऐसा संभवतः है मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो है लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेते हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड के फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। अब हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनी पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भू विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@cit.mac.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोता, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति के सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। The leaves on the trees.
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me. Alright?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green. Turning green. Turning green.
2: The leaves on the trees are turning green. Turning green. Turning green.
1: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
1: Nice. The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy, busy.

The leaves on the trees are falling down. Yellow

fallen down, fallen down, fallen down.

0: फुर्सत ब्रेक के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि ये तो ऐसा ही रहा तो एक दिन में चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
4: 6 नवंबर 1950

0: मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपने सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता

0: प्रश्न था तो फादर मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास जी के विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए जी अवश्य।
1: फादर कामी बल्कि ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
0: अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा, आप इसी समय से

0: लड़के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामल बुलकर चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: आइए आइए फादर बुलके, मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने

0: vendo aqui, pode ser mágica, não, de um cartão que me veio a preço do Patrico de uma vez e para caixa de carne aqui, para uma TDJ.
1: Father, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
1: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ फादर पुलके।
0: मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूँ।
1: जी,
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का यह अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी PhD स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
0: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है। देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, क्योंकि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है। ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहाँ भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सबहे नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं। और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूँ, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
2: बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते

0: Liberty.
1: Father inglese in fede. E mi ricordo il babaco. Se ci vuoi giù, no, che c'è la mia.
0: Se tragast un misu basico, dillini es a bruciol shilpi, ran te can ragi, bahu bhasha vid, aur hindi bhasha ke ananya sevak ka nidhan ho gaya. Unke mrityu shaya par matra do pustake thi, Bible aur Goswami Tulsidas ji ki vinay patrika. Unhein dillini mein hi dafnaya gaya.
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनके कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित

0: तमिल बोल के अभी आपने सुना ही कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: सारा भविष्य।

ఫంక్షన్ డిరెక్టర్ కళల భూమి తన తన భూమాదావు చింతల పేరు మార్గే గౌరవ कच्छ ने चार राज्यों में जोड़ती मुंद्राती हवाई सेवा शुरू पूर्व कच्छ में तीन साढ़े तीन दवाना सात पॉइंट तिरासी लाख में मादक पदार्थ कब्जे कराओ नकतला तालुके में खाद्य औषध तंत्र द्वारा 30 इकोनोमा चेकिंग दरमियान 30 किलो वार्षिक खुराक में नाश कराओ ताजा बनावेला खुराक को वेषण करवा व्यापारियों ने सूचना भूज मांडवी हाईवे पर रोलर क्रैश मेरे प्रोजेक्ट में नौतर कामगिरी અને રાજ્યમાં છેલ્લી સુધી આસપાસ 400 દેશોની હવામાન વિભાગની આગાહી હવે પછી આપ સાંજે 5 અને 10 મિનિટે મુખ્ય સમાચાર સાંભળી શકશો. નમસ્કાર.

0: सुनकर प्रसन्न फार्मा।
1: विकसित भारत 2047 ने संकल्प साधा, गुजरात शिक्षण में गुणवत्ता नवी दिशा तरफ आगे बढ़ी रही है। निपुण गुजरात अभियान, नवा राज्य अभ्यासक्रम और स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क SQAAF द्वारा शालाओं में गुणवत्ता युक्त शिक्षण में वधु सशक्त बनावा रही है। गुणोत्सव शिक्षण में श्रेष्ठता की नवी ओळख बनी रही है। विकसित गुजरात में पाया मजबूत बनावतो गुणवत्ता सफल शिक्षण, गुणवत्ता युक्त शिक्षण उज्ज्वल भविष्य। शिक्षण विभाग, गुजरात सरकार।

0: www.ASPA.com शालाओं में गुणवत्ता युक्त शिक्षण में वधु सशक्त बना प्रमाण रही रू गुणोत्सव शिक्षण में श्रेष्ठता ने नवी ओळख बनी रही है। विकसित गुजरात में पाया मजबूत बनावतो गुणवत्ता सफल शिक्षण गुणवत्ता युक्त शिक्षण विश्व भविष्य शिक्षण विभाग गुजरात सरकार।
1: मनोरंजन कार्यक्रममां हवे सांभळो सोनिया मेहोत्राना स्वरमां गवायेलुं फिल्म फुकरेनुं आ गीत।

0: आया दीदा, मगर आप किला छोड़ के चली गई भाई।
1: क्या अच्छा खासा तो किया ना, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया? सुनो ना, सोचो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन के खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को हुर्मुज जलडमरू मंडी से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के 2वें चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारतीय उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, श्रम शुद्रुन और उनके सहयोगी से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ही की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी अहमदाबाद बड़ौदा राजकोट और भुज प्रस्तुत है फौजी दोस्तों के लिए विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम जय भारती।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी दोस्त निशा जानी का सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं दिल चाहता है फिल्म के इस नगमे से। आवाज है श्रीनिवास की, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत

दोस्तों, अगला गाना है दीवाना फिल्म से, आवाज की कुमार शानू की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीतबद्ध किए हैं नदीम श्रवण ने।

जय भारती कार्यक्रम में दोस्तों आइए आप सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का यह नगमा। मिली जुली आवाजें कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने और संगीत इस्माइल दरबार का।

पिस्तौल जयपार्टी कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं क्रिमिनल फिल्म का ये गाना। ये बस स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक का, गीतकार इंदिवर, संगीतकार एम एम करीम।

दोस्तों जयपुर के कार्यक्रम का अगला नगमा है दिल तो पागल है फिल्म से। ये बात लता मंगेशकर और उदित नारायण की, आनंद बख्शी के बोल और संगीत उत्तम सिंह का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इसमें इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना है तुम फिल्म से, आवाज सुनिधि चौहान की, समीर के बोल और संगीत प्रीतम का।

जय भारती कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दिल से फिल्म का ये नगमा। युवा स्वर सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति का, गुलजार के बोल और संगीत ए आर रहमान का।

मित्रों, इस कर्म के साथ ही जय भारती कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो चला है। आपके दोस्त निमिषा जैनी को दीजिए इजाजत। जय जवान।

0: ભારતીય સંગીતની ફોજી દોસ્તો કે લીએ વિશેષ પ્રસ્તુતિ કાર્યક્રમ છે ભારતી. કાર્યક્રમ કા પ્રસારણ આકાશવાણી કે અહેમદાબાદ, બડોદા, રાજકોટ ઓર ભુજ કેન્દ્ર સે કિયા ગયા. કુછ હી દેર મેં સુનેંગે દિલ્હી સે પ્રસારિત દોપહર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે દોપહર સમાચાર કે સાથ મેં કનકલતા. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया. पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी. कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट. हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई. अब समाचार विस्तार से. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की. पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है.
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं. यह हैरान कर देने वाला

0: से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।

पर नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी

0: दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217939। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@nea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबुधाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक इसके अंदर 9 स्टेशन है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थे। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।

0: समाचार गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्य जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम राइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। कैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि मधी और एंगल हर्षा रानवे मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हिमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हिमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हिमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी

ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम कलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था।

સજા પણ ગુનો છે.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળી રહ્યા છો હિન્દી ફિલ્મ સંગીતનો કાર્યક્રમ। કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ આંખે ફિલ્મનું આગી।

आदर्श श्रीवास्तव सुंदरा ने साथियों ने आप सांभळी रह्या हता फिल्मनुं नाम हतुं आंखे. आपणे आगामी फिल्म गीत सांभळीए હરિહરન અને ચિત્રાના સ્વરમાં.

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, कम कहीं विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
1: लोक संरचना कार्यक्रम आप सामने रहे छो, हम आप सामने रहे था धर्मेंद्र कुमार पंडेर, रचना थी रूपांतरी। कार्यक्रम में हमें सामने प्रदीप सोलंकी ने, रचना छे शंकर महाराज की।

और जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का

रिजॉर्ट, मंदराचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं माला खुबचंदाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल मुख्य ख़बरूं। भारत मुतहद जमायत सलामती काउंसिल में कश्मीर मुद्दे ते पाकिस्तान ख़िलाफ़ सख़्त लफ़्ज़नि में विरोध ज़ाहिर कयो। ईरान में भारतीय सिफारतखाने पंहिंजनि नागरिकनि जे लाइ दुरुस्त कयल एडवाइज़री जारी करे गैर ज़रूरी यात्राउनि खां बचण जी सलाह ॾिनी। ओलह बंगाल में कोलकाता जे तारा तला में अॼु अदावत हेठि गोदाम दही पट थियण वारे हादसे वाकियो में 3 शख़्स फौत ऐं 5 ज़ख़्मी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत ॾखण कोरिया लाॻापनि खे वधीक मज़बूत करण ते बल ॾिनो। कोंकण ऐं गोवा में अॼु ज़बरदस्त बरसाति जो रेड अलर्ट। ओचितो आयल बोड खां पोइ असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ईंदड़ महीने ब्रिटेन दौरे लाइ 24 मेंबरनि वारे जूनियर महिला टीम जी पधिराई कई। हाणे ख़बरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। भारत मुतहद जमायत सलामती काउंसिल में पाकिस्तान पारां कश्मीर वारो मुद्दो उथारण ते सख़्त लफ़्ज़नि में एतराज़ ज़ाहिर कयो आहे। पाकिस्तान ते मुतहद जमायत मंच जो राजनीतिकरण करण जो ॾोह मड़ींदे भारत चयो त साथी अध्यक्ष जे रूप में बेतरफ़दार रहण जे बजाए पाकिस्तान उहिदे पद जो ग़लति इस्तेमाल कयो आहे। मुतहद जमायत में भारत जे दाइमा एवज़ी पी हरीश, पाकिस्तान जे दाइमा एवज़ी असीम अफ्तिखार अहमद जी टिप्पणी जे जवाब में भारत जे चिटे रुख खे दोहरायो। हुन चयो त मर्कज़ी ज़ेरसर रियासत जम्मू कश्मीर मुकमल नमूने सां भारत जो अंदरूनी मामिलो आहे।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान जे तेहरान में भारतीय सिफारतखाने सलामती हालत में सुधार खे ॾिसंदे भारतीय नागरिकनि जे लाइ दुरुस्त कयल एडवाइज़री जारी कई आहे। सिफारतखाने चयो त बदिलजंदड़ हालतुनि जे बावजूद भारतीय नागरिकनि खे ईंदड़ सूचना ताईं गैर ज़रूरी यात्राउनि खां बचण घुर्जे। तमाम ज़रूरी हुअण ते ईरान यात्रा कंदड़नि खे तमाम वधीक ख़बरदारी ऐं सुजागी रखण तोड़े हालत ते लगातार नज़र रखण जी सलाह ॾिनी वई आहे। ताज़ा ॼाण ऐं ईंदड़ एडवाइज़रीअ जे लाइ सिफारतखाने जी सरकारी वेबसाइट ऐं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते लगातार नज़र रखण जे लाइ पिण चयो वियो आहे। कंहिं बि क़िस्म जी मदद वास्ते सिफारतखाने एमरजेंसी नंबर जारी कया आहिनि। भारतीय नागरिक इन नंबरनि या ईमेल ज़रिए पिण सिफारतखाने सां राब्तो करे सघनि था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ललकार भरियल आलमी माहौल में भारत ॾखण कोरिया लाॻापन खे वधीक मज़बूत करण जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो आहे। हुन चयो त गॾियल मुल्हनि ऐं बाहिनी विश्वास वारनि मुल्कनि खे गॾिजी वधीक वेझिड़ाईअ सां कम करण घुर्जे। सियोल में ॾखण कोरिया जे विदेश मंत्री चो ह्यून सां गॾु बैठक दौरान हुन जनाब इहा ॻाल्हि चई। विदेश मंत्रीअ चयो त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मंज़र में विश्वास जोगे भाईवारनि जे विच में सहकार पहिरें खां वधीक अहम थी वियो आहे। विदेश मंत्रीअ सोशल मीडिया पोस्ट में चयो त हुननि ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में सियासी जहाज़ निर्माण तिजारती वापार सीड़प रक्षा तकनीक साफ़ सुथरी शक्ति सकाफ़त ऐं आपसी रिश्तनि नातनि वारे खिते में सहकार जी नज़रसानी कई। डॉक्टर जयशंकर चयो त
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज सुबह अमेरिकी व्यापार एवजी सफीर जेमिसन ग्रियर ऐं संदस वफ़द सां बैठक कई। श्री गोयल सोशल मीडिया पोस्ट में ॿुधायो त हुननि भारत अमेरिकी वापार ॻाल्हि ॿोल जी तरक़ीअ जो जाइज़ो वरितो ऐं ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में आर्थिक भाङे भाईवारीअ खे वधीक मज़बूत करण जे वजन ते चर्चा कई। श्री गोयल सफीर ग्रियर जी क़यादत ऐं ॿिन्ही धुरियुनि जी रचनात्मक ऐं तरक़ी याफ़्त तरीक़नि सां ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाइण जी लगातार कोशिशुनि जी बि साराह कई। तवा के ध्यान ॾियारियो त अमेरिकी वापार एफ जी सफीर जेमिसन ग्रियर 22-24 जून ताईं नई दिल्ली जे दौरे ते आहे ऐं हू सरकारी अमेरिकी वफद जी अॻवानी करे रहियो आहे। हे ख़बरूं तव्हीं आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हीं असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते पिण ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जी तफ़सील जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। ओलह बंगाल में कोलकाता जे तारा तला में अॼु अदावत हेठि गोदाम ढही पट थियण वारे हादसे वाक़िए में टे अफ़राद अजल जो शिकार थिया आहिनि ऐं पंज ज़ख़्मी थिया आहिनि। ज़ख़्मीलनि जो SSKM इस्पताल में इलाज हली रहियो आहे। राष्ट्रीय आपदा मोचन दस्तो, पुलिस, बाहि विसाईंदड़ ऐं इमरजेंसी सेवाउनि वारो अमलो, थोरे मकानी माण्हू बचाव कार्य में लॻल आहिनि। सूबाई सचिवालय में कंट्रोल रूम बरपा कयो वियो आहे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ऐं राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ऐं डॉक्टर इंद्रनील खा हादसे वारी जाइ ते पहुची करे हालत जो जाइज़ो वरितो। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अॼु नई दिल्लीअ में VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नाले वारे किताब जो विमोचन कयो। इन मौके ते उपराष्ट्रपतिअ चयो त इहो किताब सत्ता इदारनि ऐं आम नागरिकनि जे विच में मौजूदा मुफ़ासिले ते वीचार करे थो ऐं अवाम मर्कज़ शासन ज़रिए इन मुफ़ासिले खे घटाइण जी ज़रूरत ते बल ॾे थो। उपराष्ट्रपतिअ चयो त इहो किताब दुनिया जी सभ खां वॾी जमहूरियत तौर भारत जी सुञाणप जो ज़िक्र करे थो। भारत ऐं मुतहद अरब अमीरात UAE अॼु नई दिल्लीअ में रणनीतिक रक्षा भाङे भाईवारी ढांचे जे तहत रक्षा सहकार खे अॻियां वधाइण जे लाइ हिकु बैठक मुंतज़िम कई। रक्षा वज़ारत सोशल मीडिया पोस्ट में ॿुधायो त बैठक जी गॾियल सिद्धार्थ अंतर्राष्ट्रीय सहकार जे जॉइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद ऐं UAE जे ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार ज़ुकिया कई। गुफ़्तगू जो मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहकार जो विस्तार करण, नवाचार खे ओज ॾियण, ख़ासि तकनीकुनि जो लाभ वठण ऐं सामूंडी सलामतीअ खे मज़बूत करण हो। अॼु पासपोर्ट शेवा दिवस आहे। इहो ॾींहुं 24 जून 1967 ते पासपोर्ट कानून जे लागू थियण जे मद्देनज़र मल्हायो वेंदो आहे। हॉकी इंडिया 25-24 जुलाई ताईं ब्रिटेन दौरे जे लाइ 24 मेंबरनि वारी जूनियर महिला टीम जी पधिराई कई आहे। भारतीय टीम नए कोच टीम वाइट जी सरबराईअ में जूनियर एशिया कप समेत ईंदड़ अंतर्राष्ट्रीय चटाभेटियुनि जी तयारियुनि जे सिलसिले में स्कॉटलैंड ऐं इंग्लैंड में 7 मैचूं खेॾींदी।

घरेलू शेयर बाजार में तेजी जो रुक रहे हो, सेंसेक्स अज 791 पॉइंट वधी करे 76,991 ते बंद थयो। गृहमंत्री अमित शाह जुम्मे की नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जी दही आला सतह बैठक की सिद्धार्थ कंदो। आखिर में मुख्य खबरों एक बार बेहर बुधंदा। भारत और मुत्तहिद जमात सलामती काउंसिल में कश्मीर मुद्दे ते पाकिस्तान खिलाफ सख्त लफ्जन में विरोध दर्ज करायो। ईरान में भारतीय सिफारतखाने पैंजन नागरिकन के लिए दुरुस्त कल एडवाइजरी जारी करे गैर जरूरी यात्राओं का बचण की सलाह दिनी। ओला बंगाल में कोलकाता जे तारा तला में अज अदावत हेठ गोदाम दही पट थियण वाले हादसे वाके में 23 शख्स फौत ए 5 जख्मी थिया। हॉकी इंडिया ईंदड़ महीने ब्रिटेन दौरे लाए 24 मेंबरन वाली जूनियर महिला टीम जी पधाई कई। इते खबरों पूरी थियो, नमस्ते।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश कर्मत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।

ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जाने नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सेनेसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार झुके ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 212 करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है।

0: संघ ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। एस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जौहरी और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन के पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कैनेडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मुख्य समाचार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात आज नवी दिल्ली में व्यूहात्मक संरक्षण भागीदारी मार्ग हेठ सड़क प्रदारों एक बैठक योजी। केन्द्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमण गई काले नवी दिल्ली में ग्लोबल कंजर्वेशन फॉर ग्रोथ समिट ने वर्च्युअली संबोधित करी। राज्यभर में चली रहे कन्या केवड़ी महोत्सव ने सारा प्रवेशोत्सव ने द्वितीय दिवसे अंजार तालुका चंदिया सेनुग्रा नवीरा खाते सारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम योजना। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे अंतर्गत आगामी 28 जून रविवार गांधीधाम कोर्पोरेशन विस्तार 197 बूथ पर शून्य थी 5 वर्ष अंदाजे 67,000 बाळकों ने पोलियो विरोधी रसी टीपा पीवड़ा। नेत्रहीन बाळकों ने शिक्षण आपी भूज अंगशाला मकान जर्जरित तथा नव मकान न बने त्या सुधी हंगामी वैकल्पिक व्यवस्था कर अभ्यास कार्य चालू रखा अखिल कच्छ विकलांग फेडरेशन द्वारा मांग कराई। पश्चिम कच्छ फन विभाग हेठळनी नखत्राणा रेन्ज में आवेला प्रसिद्ध छारी टेन्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट रामसर साइट विस्तार में मोटी संख्या में माछीओं मौत की घटना प्रकाश में आई। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने कारण हवामान विभाग द्वारा राज्य में भारी वरसाद येलो अलर्ट जाहिर कर अदाणी ग्रुप में चेयरमैन गौतम अदाणी जन्मदिवस निमित्त अदाणी फाउंडेशन और कच्छ पोपर लिमिटेड सहयोग से मुंद्रा सरकारी दवाखाना खाते निःशुल्क मेगा जनरल सर्जरी निदान सारवार केम्प आयोजन करायु। कच्छ जिला रोजगार वाची उम्मीदवारों जिला रोजगार कचेरी भूज औद्योगिक तालीम संस्था अंजार संयुक्त उपक्रमे आती का आईटीआई अंजार खाते जिला कक्षा एप्रेंटिसशीप और रोजगार भर्ती मेला आयोजन और भूज प्रादेशिक परिवहन कचेरी खाते आधुनिक पीआई आधारित ऑटोमेटिव ड्राइविंग टेस्ट सीस्टम प्रारंभ करायो। मुख्य समाचार पूरा थया।

આપતા હોઈએ છીએ, તો

The metro, हवाप्रस्तुची आशना हवामान समाचार. हवामान खात्याने आगाही जाणवी छे कि आवता 24 कलाक दरमियान उत्तर गुजरातना छूटाछवाया स्थळोए हळवाथी मध्यम वरसाद अथवा गाजवीज साथे वरसाद थवानी संभावना छे. मध्य गुजरात अने दक्षिण गुजरातमा पण मध्यम वरसाद के गाजवीज साथे वरसाद थवानी संभावना छे. सौराष्ट्र कच्छना विस्तारोमा वातावरण सूकु रहेशे. माछीमार भाईओ माटे कोई विशेष सूचना नथी. आ हता हवामान समाचार. आ साथे ज आजनो आ कार्यक्रम अहीं समाप्त थाय छे. तो रामनो नाम लईने छूटा पड़िए. ए आवजो राम राम राम राम.

में ही कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं झलकी वो कैसी होगी। लेखिका सुधा चौधरी, प्रस्तुत कर

Yeah.

0: ikke noget godt med grund til mig, hvad der er med
1: mig.
0: Ja, hvad er det, du har
1: Anshu,
0: læser du det
1: første
0: navn, du har gjort? Hvad er det, du har
2: giant.
1: असिस्टेंट में 500 रुपए जमा करा दीजिए।
2: लीजिए सर।
1: ले लीजिए मैडम। तो ठीक है अंशुमान, हम आपको संपर्क करके जगह और दिन बताएंगे।
2: ठीक है सर, मैं करता हूँ।
1: सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज।
2: अच्छा सर, मैं चलता हूँ। बाय सर।
3: सर गया, हमने 1000 रुपए दी गए।
1: पैसे लेने वाले ग्रुप से तुम्हें याद है बाबू?
3: यस सर, मेरे 500 का बोलो, अगर उसके चेहरे पर कोई रेखा ना उभरे तो किसी को मैंने 500 और मांगो और फिर कोई रिएक्शन ना हो तो 500 और।
1: खैर अब तुम बताओ, उस लड़की शारदा से दोस्ती कैसे करोगी?
3: वो तो मैं कर लूंगी, पर गुंडे का इंतजाम वो मुझसे नहीं होगा।
1: अरे दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास है ना, वो मेरी बुआजी का लड़का, वो तो लड़की छेड़ने की बात सुनते ही फौरन मान जाएगा।
3: आप चंदा जी की बात कर रहे हैं? वो तो इतने हैंडसम है, गुंडे कैसे लगेंगे सर? और फिर वो तो जंगल में लगते हैं।
1: मेकअप बाय डियर, मेकअप तुम बस देखे जाओ।
3: पता तो यही लगता है, वो पीला वाला घर है। चलो घंटी बजाते हैं। चंद मधु ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या कहना?
4: जी कहिए, क्या कहना है आपको?
3: मैडम मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ इस क्षेत्र की महिलाओं का, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ?
4: हाँ हाँ आइए बैठिए, आप पूछिए जो भी पूछना है आपको।
3: आपका नाम टाइप किया हुआ फोन है ना आपके पास?
4: नहीं मैं खुद ही भेज देती हूँ। वैसे मेरा नाम शारदा है। आप?
3: मधु, मैं मधु हूँ।
4: इस सर्वे से क्या होगा मधु जी?
3: पता चलेगा ना किस उम्र यानी एज ग्रुप की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं।
4: अच्छा ये दीजिए, कर दिया।

0: मामा किया है। आजकल क्या कर रही है?
1: अभी तो कुछ नहीं मधु जी, सिर्फ बोर हो रही हूँ।
0: शारदा जी, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बने आपके? यानी आजकल का चलन है, फैशन है।
1: अरे नहीं मधु जी, हमारी तो परवरिश, हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही है।
0: पर ये बताइए, आपका है कोई खास? अरे कहा, मैं किसी ने सीटी बताई, मैं कभी किसी हैंडसम यंग मैन से टक्कर ली। पर हाँ, मन बड़ा करता है कि कोई स्पेशल मिले।
1: जरूर मिलेगा मधु जी, ऊपर वाला सबका जोड़ीदार बनाता है। वैसे आप रहती कहाँ है?
0: शारदा जी बस यही पास ही। तुम शाम को बोर होती हो तो घूमने क्यों नहीं आती?
1: अब अकेले कहाँ जाऊँ मधु?
0: और मैं भी अकेली हूँ। ऐसा करें कल शाम पार्क चले, पर जरा सुनसान है।
1: अरे अच्छा है मधु, भीड़ भाड़ से वैसे भी जी घबराता है। मुझे तो सुनसान जगह ज्यादा पसंद है। चलो एक दोस्त मिली आप जैसे।
0: तो कल शाम 6 बजे?
1: हाँ ठीक है मधु, कल साथ चल रहे हैं।

0: जानकारी आज देखिए आपकी मेहनत कितनी अच्छी लग रही है। पिंकी वैक्स में एकदम गुलाब के फूल जैसी।
1: अबे तुझे मधु को नहीं, मधु को नहीं, शारदा को छीन रहा है।
0: वेट,
1: वेट, उठा। वो वहाँ औरतों को छुपा बैठा है।
2: उठा जाके ये। सच मधु, कितने प्यास के हैं हवा में। जी चाहता है कि बाहों में समेट ले।
3: पर सन्नाटा कितना है, पता नहीं लोग यहाँ क्यों नहीं आते। शारदा, देखो तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है।
2: आने दो, होगा पार्क में कोई।
3: शारदा, अजीब सा आदमी है।
2: अरे कुछ नहीं करेगा, आराम से चलो। देखो मिस्टर, यह बच्चा मेरे नहीं चले गए यहाँ से। उधर जाकर कह लो जो तुम्हारे कहने जो है ना लड़कियों को ना लगे।
0: आपकी चुन्नी भी कितनी खूबसूरत है, ऐसे छोड़ो।
2: आपकी टोपी, बनियान, रुमाल और लूंगी भी बहुत खूबसूरत है। मैं भी जरा इन्हें छोड़ू।

0: ना?
1: तुम आप मुझे जानती है?
0: आप तो देखिए मेरे गाँव में तुमने क्या है?
1: मैं तो सिर्फ देखना, तुमसे मिलना, बात करना चाहता था शायद।
0: तो आप ये बेचारा तो बीच में अटक गया ना, आप उठाओ भाई इसे।
2: मैं संभालती हूँ। चंदा जी ठीक तो है ना? चंदा जी ज्यादा लगी क्या?
1: तुम्हारा हाथ लगती इधर बुखार हो गया, मुझे लग रहा है गुलाब के फूलों का सहारा मिला है।
0: ये भी तो इसलिए तुम जासूसी संस्था में गए थे?
1: हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? ओ तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज़ पहचानी से क्यों लग रही है मुझे?
0: वो लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है।
1: मैंने
2: चंदा जी पानी पियो, केवल मधुर हो ही गए।

यहाँ कैसे होगी। अभी आप सुन रहे थे एजल की मीठी खाते सुबह जोड़ी प्रस्तुति एच एस व्यास। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रमक बस थोड़ी ही देर में

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए गायक और संगीतकार ए आर रहमान और श्वेता शेट्टी की आवाजों में महबूब का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रंगीला।

मुझे अगला गीत अलीशा चिनॉय, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में, गीतकार है जफर गोरखपुरी और फिल्म का नाम है रंगराज।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह राष्ट्रीय सेवा विवेक भारती। आइए सुनिए अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार है समीर, संगीतकार है नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है राजा।

0: संगीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी लाइन लिखता है तो ऐसा मगर मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को निभाएंगे, इसके सेकंड लाइन में लिखेंगे, बस इसको बुक लाइन रखेंगे, वो गाना करके

खबर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे फिर विविध भारती पर। चित्रमोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं वाजिद खान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। गीतकार है कौसर मुनीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापारिक प्रतिनिधि दूत

0: रेनिसेंस ग्रीस के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री क्यो यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलबंधु मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीन के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जनरल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमाजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।

0: और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। यह वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस ए सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग

0: 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48,95,00,000 रूपये की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63,98,00,000 रूपये की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनके समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई है। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गयी। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारापुरा इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 सैनिकों को मलबे की घेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज एसएसके अस्पताल में हो रही है। मुख्यमंत्री सुमेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के केप अनियो जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होत पोटन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि यह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
3: मैं

0: से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारत ने नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चि मिन्ह शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चि मिन्ह शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में IMS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लुसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीन के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1950 बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम था दिल्ली से।
0: संगीतकार

शम्भु जैसा तेरा बाल है।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। पर दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं न कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: दिनेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

मोबाइलों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला, तो आज ही थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है।

यहाँ चखी बिना तो नमक पक्की परख पूरी नहीं होती। और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत। हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कोड़े दो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कोड़े दो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर तो जाए। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार। चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

कार्यक्रम के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, ये न तो मांस है न ही कोई पेय, न नींद न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूँ मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूँ तुम्हें मैं, फिर क्यों तुम्हें

जीवन में जो आई थी उमंग पतझड़ में जो आई था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, हार में और मैं भूल गई हूँ सब, सब कुछ, सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खाली पन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थी। हाँ, ये सच है, पर अब समय का महम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का महम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे या रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूँ। अब मैं अपने वश में हूँ। हाँ, अब मैं अपने वश में हूँ। किसी

வாசலுக்கு ஒரு அம்பரமே शाम जीवन का मैदान सिर्फ मेहनत बनाती है।

0: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारामला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKN मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।